0: इश्क है और जान इश्क है, इश्क सरमत इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है।
1: Des animateurs sans conservateurs. Ah, on est bien sur Radio Terre. 100.6 FM.